0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: Sangeet.
3: रूदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
3: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
3: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है,
3: जिंदगी सांझ है, खिमा है,
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है।
3: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब।
3: कल्चर ऑफ पंजाब
4: नमस्कार आदाब सामीन, कैसे हैं आप? इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से हैं, मैं प्रीत चाहूंगी इजाजत आज के शो का आगाज करने की एक बेहद डीप थॉट के साथ, समथिंग टू पॉन्डर ओवर। अच्छा हुआ यूं कि कल कुछ लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। वहां सब किसी न किसी शख्स की बुराई कर रहे थे, सभी के अपने अपने मत थे, अपने अपने विचार थे। आखिर सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी जो थे, कोई कह रहा था कि वो शख्स ऐसा है, कोई कह रहा था वैसा है। सभी के अपने अपने विचार थे जो उन्होंने शायद अलग अलग पहलुओं को या अपने अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर बनाए थे। मैं उन लोगों की बातें सुनकर सोच रही थी कि हम किसी के बारे में कुछ कहने, सोचने या फैसला देने वाले आखिर होते कौन है, किसने दिया हमें यह हक, और सबसे अहम बात कि इससे हमें मिल क्या रहा है आखिर। अच्छा सच के बारे में विवाद सुनती हूँ तो आश्चर्य भी बहुत होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्ञान तो निर्विवाद है, निष्पक्ष है। होता है ना ऐसा कि इन विवादग्रस्त विचारधाराओं और पक्षपातों में पढ़कर हम खुद ही अपने हाथों से सच और स्वयं यानी खुद के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, और ये सब किसी भी एंगल से, किसी भी पर्सपेक्टिव से कोई सुकून नहीं देता हमें, रेस्टलेस ही रहते हैं, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। एंटर हो गए हैं जी आज हम साल के 8वें महीने में। आज की तारीख की बात करें तो आज यानी 1 अगस्त 1960 को इस्लामाबाद को डिक्लेयर कर दिया गया था एज द फेडरल कैपिटल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 1 अगस्त 2008 को 11 माउंटेनियर्स को फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपेडिशंस दे डाइड ऑन K2 जो कि सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। इस इंसिडेंट को वर्स्ट सिंगल एक्सीडेंट माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ K2 माउंटेनियरिंग। इसके अलावा आज ही बर्थ एनिवर्सरी है इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद निसार की। होशियारपुर पंजाब में जन्मे शेख मोहम्मद निसार 47 में माइग्रेट हो गए थे पाकिस्तान, और वहां वो वन ऑफ द फाउंडर्स थे ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और साथ ही साथ आज ही बर्थ एनिवर्सरी है बेहद खूबसूरत इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और पोएटिस महजबीन बानो यानी मीना कुमारी की। मीना कुमारी को अक्सर ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी रेफर किया जाता है फॉर हर फ्रीक्वेंट पोर्ट्रेयल्स ऑफ सॉरोफुल एंड ड्रामेटिक रोल्स इन हर फिल्म्स एंड इन हर रियल लाइफ एज वेल। और बिसाइड्स ऑल दिस, आज यानी 1 अगस्त को ही डेथ एनिवर्सरी है इंडियन लॉयर और जर्नलिस्ट बाल गंगाधर तिलक और इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन हरकिशन सिंह सुरजीत की। हरकिशन सिंह सुरजीत ने सर्व किया एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1992 टू 2005।

0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, जिंदगी एक ऐसा मौजू है, ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जितनी बात कर लें कम होगी और यकीनन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जिंदगी को और इसके किसी भी पहलू को जनरलाइज तो किया ही नहीं जा सकता। अब देखें ना, किसी के लिए तो जिंदगी खुशियों का ताजमहल है और किसी के लिए अपने हसरतों का कब्रिस्तान, किसी के लिए सुहानी सुबह है और किसी के लिए ये अंधेरी रात। कुछ को लगता है कि ये बादे सबा है और कुछ के लिए जून जुलाई की झुलसती लू। बहरहाल यहीं खत्म नहीं करेंगे, इस बात को जारी रखेंगे पर इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: अच्छा, अगर ये मान भी लें कि कुछ रंग हमारी किस्मत खुद बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक सच ये भी है कि कुछ रंग हमें खुद चुराने पड़ते हैं, मेहनत, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से। चलें फिर क्यों ना आज ये वादा करें कि हम जिंदगी के सारे खूबसूरत रंग चुरा लेंगे। कामयाब ना भी हो पाए तो कोई गम नहीं, कम से कम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छी बातों के साथ साथ आप तक बेहतरीन म्यूजिक भी पहुंचाया जाए आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में, विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता।

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: अच्छा, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी ने खुद ही बता देना है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने पॉजिटिव हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों में खुद लो सेल्फ एस्टीम है ना, दे स्टार्ट जजिंग द अदर पर्सन विद हिज पोजेशंस एंड नॉट बाय हु ही और शी एक्चुअली इज। ऐसे लोग बस यही नोट करते रहते हैं कि आप कौन सी कार ड्राइव करते हैं, कपड़े और ज्वेलरी कैसे डालते हैं, कितने बड़े मकान में रहते हो। डिजाइनर लेबल्स इनके लिए स्टेटस सिंबल हैं, और एक्चुअली मैं तो ये फील करती हूँ कि इनसे अगर ये सब चीजें ले लें तो दे विल डाई ऑफ शेम, और वो इसलिए क्योंकि इनकी जिंदगी घूमती ही सारी इन मटेरियलिस्टिक चीजों के इर्द गिर्द है।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: अच्छा एक बार ये सोचकर बताएं कि ज्यादा बेटर फीलिंग क्या है कि लोग ये याद रखें कि आपकी पहनी हुई ज्वेलरी बहुत महंगी थी, आपके आउटफिट्स बेहद कीमती हैं और आप बड़े बड़े डिजाइनर्स महंगे डिजाइनर्स की क्रिएटिविटी का नतीजा पहने हुए हैं, या फिर ये कि आप खुद एज एन इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट बेहद ग्रेसफुल हैं और लोगों की नजर चाह कर भी आपकी ड्रेस या ज्वेलरी पर ना जाकर आप पर टिकी रहती है. How very smartly dressed. मेरे ख्याल से इस कॉम्प्लीमेंट से तो बेटर कॉम्प्लीमेंट ये है कि how very confident and intelligent.

हम मूर्ख किशु ना जानहा क्यों पावै पारो। जन नानक हर का दास है हर दास बनिहारो। ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दार तन पदार्थो फिर बहुना चलिया। जन नानक नाम आरा दिया आराधार मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्तै हर नाम ना बीजियो अगै भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किसै दै किश नाहीं सब चलें चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिलै जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया।

0: ओए सुनो सुनो जी, गर्चा ब्रॉज लेके आए ने इस समर दा सब तो वड्डा कॉन्टेस्ट।
1: 15 जून तो संडे, 16 अगस्त तक गर्चा ब्रॉज तो शॉपिंग करो।
0: रिसिप्ट दे QR कोड नु स्कैन करो ते कॉन्टेस्ट विच एंट्री पाओ।
1: जीत सकते हो अलास्का क्रूज, एयर फ्लाइट्स, 5 स्टार होटल स्टे,
0: बारबेक्यू ग्रिल्स ते गर्चा ब्रॉज गिफ्ट कार्ड्स। हां जी, प्राइजेस वर्थ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स।
1: समस्ता स्वाद भी ते प्राइजेस दी बरसात भी सिर्फ गर्चा ब्रॉज से।
0: डोंट वेट, विजिट योर नियरेस्ट गर्चा ब्रॉज स्टोर। गर्चा ब्रॉज समर कॉन्टेस्ट
1: 15 जून तो 16 अगस्त, टेस्ट दैट ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, सी ऑनलाइन फॉर डिटेल्स।
0: फाइनेंशियल सक्सेस प्लानिंग नाल आउंदा है, ना कि सिर्फ किस्मत नाल। दलजीत कैंथ नूरा फाइनेंशियल तो तुहानू गाइड करदे ने रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट्स ते टैक्स प्लानिंग विच सिंपल, क्लियर ते रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नाल। बुक करो अपनी कंसल्टेशन आज ही। कॉल 204-979-0786। नूरा फाइनेंशियल, फ्यूचर नु सिक्योर करो आज तो।
2: की तुहाडा भी सपना है के अपना घर होवे, ता इको एक नाम याद रखियो, वेंचुरा।

0: रेडियो धमाल सीके जेएस 92.7 एफएम दे उत्ते दोस्तों अपने प्रोग्राम तो बाद एक आफ्टरनून पसादा प्रोग्राम चलता है और कुदरती चलो साड़ी जो होस्ट है उसका नाम डोना डोना कैन यू कम ऑन द कैमरा नो नो लाइक दिस वे ओके सो डोना साडा फिलिपिनो प्रोग्राम साडे तो बाद बहुत बिजी इट्स द बिजीएस्ट शो यू हैव राइट आफ्टर मी
1: यस आई एम एक्चुअली सिटिंग इन फॉर लुसियल इट्स नॉट माय शो बट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल आवर इंडियन फ्रेंड्स टू जॉइन अस 3 to 7 PM हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी एंड हैप्पी लॉन्ग वीकेंड
0: या सो हैप्पी लॉन्ग वीकेंड हैप्पी फ्राइडे थैंक यू डोना सो आफ्टरनून पसादा तुसी शो सुनते हो साडा बहुत हिट शो हैगा सो उसते साडे दो होस्ट ने वन ऑफ देम इज डोना सो थैंक यू फॉर शोइंग अप इन माय स्टूडियो थैंक यू